0: पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ परिए सा पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़िए खा पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेते आज पड़िए जेते सा नानक लेखे एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़े मो तीर्थ पवे ते तुलविया

0: कोड पहनना कोड काया कोड कपड़ कोड रुपया पार कोड मिया कोड बीबी खा फोए खा कोड कोड़े ने हो लगा बिसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलना कोड मिठा कोड माफिया कोड बेपो नानक बखाने बेनती तुदवाच कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सचता प्रजानिया जद सचा होवे कूड़ की मल त्रतन करे हच्छा तो इस सचता प्रजानिया जस सच तरे पिया नाउ सुन रहस्यता पाए मुखवा सचता पर जानिए जजुगत जाने जियो तत्क सत्य बिच देख तवे।

0: कुदरत वसया तेरा अंत ना जाए लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला पर पूर रहे है। तू सच्चा साहिब सिद्ध सवाल जिन किती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्मण

साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सत विकास मान।

हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसार ना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवार नाम सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदार हो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं करते रह करता तेरे सब किस है सदेह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजी शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाहीं करते रह साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर संत सुख मनवाई वसया जन सा सब पुजाइया

कर शांत सुख अनुभव से याद ने सा सब कुछ आईया सदा कुर्बान किता गुरु बैठो इस दया कह नानक सुनो संतोष उतरो प्यारो साचा नाम मेरा धारो वाजे पंच सब तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंठ कुमारे तोर करम पाया तुजन को से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख आदित करा नद वाजे आनंद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाए आ उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनहतूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनहतूरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तू ठाकुर।

0: बोले सोनेहाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे।

दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दे। नूर अरसों कुरसों चटिया तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटिया सजन सचा पातशाह।

तेरा मर्तवा रंग अनेक न जपन करतवा जियांत्र जियो सुख जाला सुख तेरे बस तेरा कृपला तेरे कर अनंत दाय कर मार मत तेजा अपना आप जर

दास सदा कुर्बानी। बोलो जीवा हे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लें ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जुन आर को बेंदनो समरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस जिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर समरै कर नौन दया वै ताए। सब थाई वै सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई वै सहाय दसां पातशाहियां जी दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान तरके। बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाई। देख के अणजठ कीता तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंध बंध कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके। बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे रहे। तो देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा साई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन।

गुरु प्यारी सात संगत जी, आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ करिए ते गज वज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

जाए सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाइया सिद्धां पुरखां कियां वड्याइया तुद वण सिद्धी किने ना पाईआ करम मिले नाही ठाक रहाइया आखण वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू देहे तिसे क्या चारा नानक सच सवार नहारा आसा महला पहला आखां जीवां विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूखै खाए चली है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना ओह मरे ना होवै सोग दिंदा रहे ना चूकै भोग गुण एहो होर ना ही कोए ना को होआ ना को होए जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात जैना देना करके कीती रात खसम सारे ते कम जात नानक नामे बायसनाथ राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखां बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपता सहे मिल संगत गुण परगास जैनो हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं पाए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान महे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जंत उपाए आकार रिजक आगे कर धरया मेरे माधु सतसंग मिले तो पाया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बहिता कोए न किसकी तरिया से समाहे ठाकुर का
अहि मन पौ करया ऊड़े ऊड़ आवै सैकुंसा तिस पाछी बचरे छरया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में ही सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परब्रया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परब्रया राग हासा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सबतियाँ वहीं सबतियाँ वहीं तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या वह संतो जी सब दुख विसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाणा तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हरते आवहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी तेनो टूटी जमकी फांसी जैना निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर निकणिक अनंता तेरी अनिक करें हर पूजा जी तप तापहि जपहि बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरत जी तू आपे करहे सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी
जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याओ, जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख वाया, तुदे आ विछोड़िया आ मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसना तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मैं दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ भैले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबी अले, मान एक ना चेतस मूड़ मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जेरों तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भाजे केवल नाम, स्रंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कोहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काबो हो, आप हाथ दे महे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवै रिनको आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभात मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा,
ਸਿਰਿਆਸ ਜੋ ਕਰੀ ਹੋ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਮਹਿ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਦਸਕੰਤਾ, ਕਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਥਰਾ, ਕਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਮਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ, ਬੇਦਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜੱਛਣ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦੇ ਅੰਤ ਇੱਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ, ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਦ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਗਏ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚਿੰਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਨੇ, ਜਾਵ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਵ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਾਵ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤੋਂ ਕਬਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਵੇਦ ਵੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ, ਆਦਿ ਅਨੀਰ ਅਨਾਦਿ ਅਸੰਭ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਪੀਤਾ, ਜਾਕੋ ਭੀਵਨ ਬਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾਕੋ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਡਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਦ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਇੱਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀਂ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਰਸੇ ਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤਪਜ ਖਾਣ ਬਹੁਰ ਰਚਦੀਨੀ, ਕਹੋਂ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵਾਏ ਬੈਠਾ, ਕਹੋਂ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਅਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਉ, ਅਜੁਗਾ ਸਰੂਪ ਸਿਉੰਭਉ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਰੇ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸੁਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣਗਾਤਾ, ਜੇ ਆਸ ਧੋਜੇ ਤਬ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੈ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਮਣ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨ ਹਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨ ਕਮਾਇ ਹਰਿਓ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਹਾ ਸ਼ਵੈ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ।
एक बार जिन तुम्हें सवारा कल फांसती ताहे ओबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दरिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर ठोर मो हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर ठोर मो हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे तबते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक गहे मत एक ना माने सिमृत शास्त्र वेद स्वभाए बहु भेद कहें हम एक ना जाने सिर यसपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखने दोहरा सगल दोहर कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगाभो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर दां तेरा सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जेनों भुखा सब गवैया कर शांत सुख मन है बसया जेनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिठो जिस दियाँ एह बढ़ाइया
कहे नानक सुनहु संतो शबद रूपे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित करे सपागे करे सपागे शबद वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनका से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तेते घर अनहद बाजी आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाए आ उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसरो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरेया तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरेया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

आहो माले जन्म जन्म दी कट्टी आए सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बहठिया सोही है सबना दा वैसा हो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बहठिया सोही है सबना दा वैसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवां प्रभु की शरण सगल पैलाथे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभु की शरण सगल पैलाथे

स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता कर कृपा प्रभ दीन दए अल्ला गुण गाव रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान दृढ़ाए आओ चिंता सगल बनासी कर कृपा अपनों कर लीना मन वसिया अबनासी ताको बिगन ना को लागे जो सतगुर अपने रखे चरण कमल बसेरद अंतर अमृत हर रस चखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने जेना मन की इच्छा पजाई नानक दास ताक बलहारे जेना पूरन पैर रखाई कर सेवा सेवक प्रभ अपने जेना मन की इच्छा पजाई नानक दास ताक बलहारे जेना पूरन पैर रखाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

हिन पल रह ना सको बिन नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़िया मैं हर हर नाम अधार रमैया क्यों ए हरि दा नाम हर हर पाठ पढ़ना गुरु जी कहंदे ने के मेरे प्राणा दा आधार।

वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महले पंजवे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरं सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद तारं, गुर अर्जन गुण सहज विचारं, गुर रामदास कर कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो, भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो, शब्द गुरु पर गास्यो हर रसन बसायो, गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो, गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो, बड़ भागी उन मान्यो

अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दर्शायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनपौ ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग आलीना गुर शब्दे मन मानिया अपती जपतीना गुर नानक सच नीव साच सत गुर संग लीना गुर अर्जन कर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरे ओ बिमल बुद्ध सत

अमर सतगुर शब्द समायो, धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो। जय जयकार जास जग अंदर, मंदर भागत जुगत शिव रहता। गुर पूरा पायो बड पागी, लिव लागी मेदन पर सहता। पै पंजन पर पीर निवारन, कल सहार तोहे जस बगता। कुल सोडी गुर रामदास तन, धर्म तुजा अर्जुन हर भगता। त्रम तीर गुरमत गंभीर, त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारन। शब्द सार हर हर सम उदार, अहंग मेव उदारन। शब्द सार अहंग हर सम उदार, अहंग मेव निवारन। महादान सतगुर ज्ञान, मन चाओ न हुटै। सतवंत हर नाम मंत्र, नव निध नानुखुटै। गुरु रामदास तन सर्व मैं, गुरु रामदास तन सर्व मैं सहज चंदोआ तानियो। गुर अर्जुन का

सत संतोख धरियो उर आद पुरख पर तख लिख्यो अक्षर मस्तक तुर प्रगट जोत जगमगै तेज पू मंडल छायो पारस परस परस परस।

तेह जन जाचो हो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो। परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंग्यो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यो। अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और ऐ काम स्यो। मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत

फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। काल समुंदर पे रूप प्रकट हर नाम उदाहरण, बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई, मन बच जिन जानियो भयो ते समसर सोई। तरण गगन नवखंड में जो

भले हो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक धर्म सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सकल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सकल।

सद्गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन और पवित्र स्थान विखे हाजरिया भर रहे हाँ, जो सतगुरां ने प्रसन्न हो करके पावन हुक्म दी दात बख्शी है। सो पावन हुक्म तनासरी राग दे अंदर पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जीआं दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दे अंदर 685 अते 686 अंग दे उपर सुभायमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राहीं ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ

0: कड़िया सब गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पणि वह संत चंद सूरज अवतार सगली तलते माल तन बर्तन सर्ब नाह ज्ञान बिहूनी खाय गया तुमकाल महला पहला
1: वायन चेले नचन गुर पैर हरायन फेर उड़ उड़ रावा झटे पाए वेखै लोक हसै कर जाए